धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: भक्तिवेळ सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: वचनबद्धता का महत्व. पुराने जमाने के लोग जुबान के बड़े पक्के होते थे. एक बार बोल दिया सो बोल दिया. वे फिर दिए हुए वचन से कभी मुकरते नहीं थे. लेकिन आज ना तो वो समय रहा ना ही वे लोग. बस केवल बची है उनके वचनबद्धता की कहानियां. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वचनों के कितने पक्के थे ये तो सर्वविदित है. जिसके लिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाई. इंसान को सदा सदा के लिए अमरत्व दिलाने वाला अविनाशी गुण है वचनबद्धता. वचनबद्धता अर्थात दिए वचन को हर हालत में किसी भी कीमत पर पालन करना. किए हुए वादे को प्राण की बाजी लगाकर भी अंत तक निभाना. कहे हुए शब्दों पर अटल रहना. दिए हुए वचन पालन करना अपने आप में एक महानता है. लेकिन बोलकर बाद में हेरफेर करना और फिर वादे से मुकर जाना बड़ी कायरता. और इस कायरता से बने लंबे समय के घनिष्ठ संबंधों में दरार आ जाती है. समाज में व्यक्ति इज्जत का पंचनामा होता है. जो जुबान का कच्चा होता है उस पर सहसा सहजी कोई विश्वास नहीं करता. सभी ऐसे व्यक्ति से बचना चाहते हैं. इसके विपरीत अपने बोल पर जो अटल रहता है उस पर सभी की निगाहें टिकी रहती है. सच तो ये है कि वचनबद्धता व्यक्ति को घर परिवार और समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है. इंसान की गरिमा और महिमा वचन पालन में है ना कि वचन से फिर जाने में. इससे तो व्यक्ति की चारों ओर निंदा ही निंदा होती है और जिससे होती है अंत में चारित्रिक हानि. तो दूसरी ओर वचनबद्धता से आदमी की वाही वाही होती है. उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ जाता है. छोटे बड़े सभी उसका आदर सत्कार करने लगते हैं और उसकी कीर्ति भी दसों दिशाओं में फैलती है. ऐसा व्यक्ति इतिहास पुरुष बन जाता है. अपने अपने अटल वचनों से जनमानस में छा जाता है और लोग उसके आचरण का अनुसरण करने लगते हैं. हर बात में उसका मिसाल दिया जाता है. अतः वचनबद्धता के महान मूल्य को अपनाइए और इतिहास में अजर अमर अविनाशी स्थान पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं है.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने

0: करने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष

0: ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमीकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथ पुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु।

0: 1-800-324-70362. Mobile Sankhe 9448-99-8331.
1: Dhwani Dhwani Edo Namma Dhwani.
2: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
3: धड़कन
4: द हेडलाइंस। इंडिया कॉल्स फॉर क्लोजर कोऑपरेशन मेंबर कंट्रीज टू टैकल चैलेंजेस अमिड जियोपॉलिटिकल। Defense Minister Rajnath Singh.

फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजेस्वरा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, ढेर सारी बातें और ढेर सारे गानों के साथ आई हूँ मैं। तो आज का शो शुरू करने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, मस्त गर्मा गर्म चाय कॉफी या कोल्ड कॉफी या शरबत या जो कुछ भी आपको चाहिए ले लीजिए। एक अच्छी सी कम्फर्टेबल जगह देख के रिलैक्स होके बैठ जाइए। रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कीजिए और उसी के साथ इस म्यूजिक को एंजॉय कीजिए जो मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ। शुरू करती हूँ आज का शो और सुनाती हूँ आज के शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए।

0: हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

दोस्तों, हमको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि सब हमें नोटिस कर रहे हैं? हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा काम, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, हर एक छोटी चीज पे सबकी नजर होती है, ऐसा हमें हमेशा ही लगता है। आपको लगता है कि नहीं? सच बताना। अब मैं पूछ रही हूँ तो इसलिए भोले मत बनना कि नहीं नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं लगता। हर किसी को ऐसा लगता है कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, और ये बिल्कुल सच है ना? इसी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें एंजॉय कीजिए। लौट कर आइए KLEV ध्वनि 90.4 FM। Be relaxed with Artist Swarabha।

कुछ बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई चीज लोग नोटिस करे और हम डर डर के वो काम करते। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपने आज एक मैली शर्ट पहनी है और आप चाहते हो कि लोग उसे नोटिस बिल्कुल भी ना करें, और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आपके पास वही एक ही शर्ट बची है और आपको वही पहननी है, बाकी सारी शर्ट्स धुलने में गई है या फिर किसी को इस्त्री नहीं है, कोई फट गई है, व्हाटएवर इट इज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और आप नहीं चाहते कि लोग उसे नोटिस करें, पर आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास वही एक शर्ट है जो आपको आज पहननी पड़ेगी, तो आप वो पहनते हो और छुप छुपाते, डरते, यू नो, आंखें चुराते बाहर निकलते हो, ऑफिस जाते हो, अपना काम करते हो, पूरा दिन बिताकर घर वापस आ जाते हो, और फिर आपको हैरानी होती है कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि भाई तुम्हारी शर्ट मैली है, क्यों यही शर्ट पहन के आई, दूसरी शर्ट नहीं है क्या, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, ना आपके पड़ोसियों ने जब आप घर से निकल रहे थे, ना बस में या रिक्शा में या कार में या आपके साथ जो कोई भी ट्रैवल कर रहा था उसने भी नोटिस नहीं किया। ऑफिस पहुंचकर पूरा दिन आपने काम किया, ना आपके कॉलीग्स ने नोटिस किया, ना आपके ऑफिस के प्योन ने नोटिस किया, ना लिफ्ट में आते जाते लोगों ने नोटिस किया, ना लिफ्ट मैन ने नोटिस किया, ना पार्किंग में मिले दोस्तों ने नोटिस किया, और जब आप लौट रहे थे चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए रुके थे तब भी किसी ने आपकी मैली शर्ट नोटिस नहीं की। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था कि लोग कहेंगे कितनी मैली शर्ट है, ये तो अपने कपड़े नहीं धोता, हाइजीन मेंटेन नहीं करता, पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अच्छा हुआ किसी ने नोटिस नहीं किया। ऐसा कितनी बार हम सबके साथ होता है कि हमें डर होता है कि ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए हम बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, उस बात का बहुत प्रेशर लेते हैं, पर एक्चुअल में किसी को उसकी कुछ भी पड़ी नहीं होती। होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, और उसके बाद मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और मुझे क्या पता चला मैं आपको बताऊंगी, पर इतनी जल्दी क्या है, कुछ गाने भी सुन लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है बी रिलैक्स और आप सुन रहे हैं KLEV 90.4 FM।

वेलकम बैक दोस्तों। तो हम जिस बारे में बात कर रहे थे ना कि हमको ऐसा लगता है सब हमें देख रहे हैं, हमारे ऊपर ही सबका ध्यान है, हमारी कोई भी बात किसी से नहीं छुपती, इस टेंडेंसी को कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। और ये हर एक इंसान में ज्यादा कम मात्रा में, थोड़े बहुत मात्रा में होती ही है। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। स्पॉटलाइट यानी जब भीड़ में किसी एक जगह पर लाइट छोड़ी जाती है, स्पॉट किसी एक स्पॉट पे, उसे स्पेशली उस स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए जब लाइट छोड़ी जाती है, उसे स्पॉटलाइट कहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि सब लोगों का ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है। स्टेज पर जब नाटक चल रहा होता है, हीरो के ऊपर स्पॉटलाइट जली हुई होती है ताकि सबका ध्यान हीरो की तरफ जाए। तो हमको ये ऐसा लगता है कि हम ही हीरो है और सब लोग हमें देख रहे हैं, किसी को और कोई काम धंधा नहीं है, बस हमारे ही पीछे पड़े हैं, है कि नहीं। मेरे को तो बहुत बार ऐसा लगता था, पर धीरे धीरे इसके बारे में जब पता चला और मैंने सोचना शुरू किया, तब लगा कि साला ये बात तो सच है, हर किसी को ऐसा लगता है। एनीवेज हम पॉइंट पे वापस लौटते हैं, पर कुछ गानों के बाद लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर बातें करेंगे। सुनते रहिए KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM।

अब कुछ सालों पहले एक जगह पे एक क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक शर्ट पहनाई थी एक स्टूडेंट को, जिसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, और उसे कहा था कि बस कुछ नहीं, तुम्हें चुपचाप ये शर्ट एक दिन पहननी है और उसके बाद में हम तुम्हें दूसरे दिन मिलकर सवाल पूछेंगे। वो लड़का, उसने ये शर्ट देखा और उसमें इतनी सारी गलतियां थी, उसे लगा कि यार सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और सब लोग मुझे ये करेंगे वो करेंगे, और फिर उसका दिमाग में बस पूरे दिन यही चल रहा था कि मेरे को नहीं पहननी है, पर ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो मैं मना नहीं कर सकता, और सब लोग मुझे ये करेंगे, चिढ़ाएंगे और कमेंट्स करेंगे, सब लोग नोटिस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो सुबह से शाम तक स्कूल में वो शर्ट पहनता है, और फिर उसके दूसरे दिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे थे, उनमें से कितने लोगों ने तुम्हारे शर्ट को नोटिस किया होगा। उसने साधारण 60-70% लोगों ने मेरे शर्ट को नोटिस किया और बाकी लोगों ने नहीं नोटिस किया, क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं की थी या फिर मैं उनको उस दिन मिला नहीं था, वो काफी दूर बैठे हुए थे, ऐसा जवाब दिया। बाद में उसके सभी क्लासमेट्स से भी पूछा गया कि ये शर्ट उसने उस दिन पहनी थी आप लोगों ने नोटिस की थी या नहीं की थी। तो रिजल्ट में ये पता चला कि जितना उस लड़के को लग रहा है कि 70-80% लोगों ने उसको इस शर्ट को नोटिस किया था, वो बहुत बड़ा नंबर था, और एक्चुअल में 10-15% लोगों ने ही उसके शर्ट को नोटिस किया था। यानी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमको छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, हमको ऐसा लगता है कि एक इंसान ने देख लिया तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कितने लोगों ने देख लिया, पर एक्चुअल में लोगों को हमारी लाइफ में या हम में उतना इंटरेस्ट है ही नहीं जितना हमको लगता है कि लोगों को है, और अगर है भी तो लोग तो कुछ कहेंगे ही, उनका काम है कहना, इतना क्यों टेंशन लेते हो। तो ये टॉपिक चूज करने का क्या एक्चुअल रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमको ऐसा लगता है कि सब हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, छोटी से छोटी बात हमारी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और ये भी सच है कि हमको जो ये लगता है वो बिल्कुल गलत है। हमको जितना लगता है ना कि लोग इतना ध्यान से देखते, उसका 10-15% भी वो लोग उतना ध्यान से नहीं देख रहे होते। सो हियर आर टू फैक्ट्स कि हमको ऐसा लगता है कि सब हमें देख रहे हैं, और फैक्ट ये है कि एक्चुअल में हमें ज्यादा कोई देख नहीं रहा। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब ना इसके दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर हम सोचे तो हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सब हमें देख रहे हैं, हम

हमेशा ही अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। हम हमेशा ही वेल ग्रूम्ड, साफ सुथरे और अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। हम हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट का, कि हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं और अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये हमको अच्छा इंसान बनने में मोटिवेट ही कर रहा है ना, तो दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। पर हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस इफेक्ट के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा पहलू मैंने आपको बता दिया, बुरे को जानेंगे कुछ गानों के बाद। क्या जल्दी है, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

नेगेटिव इफेक्ट ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट का कि हम बहुत ही प्रेशराइज्ड फील करते हैं। बहुत बार हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी इच्छा नहीं होती कि हम अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, कि हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें सब लोगों के लिए, पर हमें इस चीज का प्रेशर फील होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई देख रहा है, वो क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा। वी हैव टू बी अप टू डेट, वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, वी हैव टू परफॉर्म वेल। इससे कई सारी मानसिक बीमारियां भी होती है, लोग डिप्रेशन का शिकार भी बनते हैं, लोगों को एंजाइटी भी होती है। इसकी वजह से सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट होता है, इसकी वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इसकी वजह से हम खुलकर जी नहीं पाते, हमेशा ही अपने आप को एक दायरे में बांध कर रखते हैं। ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव इफेक्ट से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इनके साथ कैसे डील करें ये मैं आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। पर उससे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैं अपने हिसाब से रिसर्च करके आपके लिए लेकर आती हूँ, तो कभी कभार कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना भाई, पकड़ के मत रखना, इतना नोटिस मत करना मुझे। एनीवेज शो में आगे बढ़ते हैं, कुछ प्यारे गाने सुनते हैं। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

अब मैं आपको बताऊं, ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है ना, इसको ज्यादा भाव ही मत दो, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए जिंदगी। यानी आपको वही करना है जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। हाँ, नोटिस करते हैं लोग, पर कुछ ही लोग नोटिस करते हैं। जैसा हमको लगता है पूरी दुनिया हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है, वैसा एक्चुअल में नहीं होता। एक तो हमारे जो बहुत करीबी है, जो हमें रोज मिलते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं। फिर जो लोग हमारे लिए सच में बहुत केयर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे हितचिंतक है, वो लोग नोटिस करते हैं। और जिन लोगों का प्रोफेशन है सबको नोटिस करना, वो लोग नोटिस करते हैं। उसके अलावा किसी को भी आपकी लाइफ में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इस चीज का इतना प्रेशर फील मत करिए। हाँ, अगर ये स्पॉटलाइट इफेक्ट आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है, अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। पर एक हद तक, जब वो हद क्रॉस होगी और उससे आपको तकलीफ होने लगेगी, तो आपको अपने आप को संभालना खुद पड़ेगा और अपने आप को खुद ही रोकना होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसके बारे में अगर आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते तो आपको नंबर पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ मैं आज स्वरा विदा नहीं ले रही हूँ, कुछ प्यारे गाने सुना रही हूँ, विदा इसके बाद लूंगी। ओके, सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

दोस्तों ये था आज का शो। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और खुद पर ध्यान दीजिए। खुद को बेहतर बनाइए, इसलिए नहीं कि लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बेहतर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। स्पॉटलाइट इफेक्ट हर एक की लाइफ में होता है, पर उसे कितना इम्पोर्टेंस देना है ये भी हमारे हाथ में होता है। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि। दिस इज आरजे स्वरा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और यादों के बारात हमारा फेवरेट शो लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, जब से हमारा बॉलीवुड शुरू हुआ है तभी से इस बॉलीवुड में एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसा खानदान है जिन्होंने अपना हुनर खुल के दिखाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है कपूर फैमिली। यानी बॉलीवुड के पहले जनरेशन से लेके आज तक इस फैमिली के बच्चों ने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से हमें बेहद एंटरटेन किया है। तो आज का थीम कपूर फैमिली ही है। शुरू करते हैं आज का शो। मैं आपको आज का पहला गाना सुनाती हूँ, दिल उसे दो जो जा दे दे, जा उसे दो जो दिल दे दे। अंदाज फिल्म का ये गाना है जो 1971 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने, गाया है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी ने काम किया था। शम्मी जी के डांस स्टेप्स की तो हम क्या तारीफ करें, उनकी अदाओं की भी तो कोई तोड़ नहीं है। शम्मी जी की बातें तो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले ये गाना सुन लीजिए। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है वेणु ध्वनि और यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर शुरू हो चुका है। पहला गाना आपने सुन लिया है। शम्मी जी के बारे में बात करें तो वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। ख्वाब तो कई देखे थे पर अल्टीमेटली जहाँ पे खुद का टैलेंट था वहीं पे आके रुक गए। शम्मी जी बचपन में अपने पिताजी के नाटकों में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया करते थे, जिसकी वजह से कई बार वो स्कूल में लेट पहुंचते थे। एक बार टीचर ने कंप्लेन कर दी तो टीचर को मिलने के लिए उनके पिताजी नहीं पर उनके बड़े भाई राज कपूर साहब पहुंचे। जब टीचर ने गुस्से में अनाप शनाप कहने की शुरुआत की तो राज कपूर साहब को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैडम, एक्टिंग अभिनय हमारी रोजी रोटी है, थिएटर से हमारा घर चलता है, अगर आप उसी की इज्जत नहीं करते तो मुझे मेरे भाई को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, चलो शमशेर चलते हैं यहाँ से करके कह के उन्होंने शम्मी जी का हाथ पकड़कर उनको स्कूल से बाहर ले आए। देखा दोस्तों, एक्टिंग के लिए इस फैमिली के दिल में कितना फक्र है, कितनी लगन है और कितना अपनापन है। इसी के साथ अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ, एक रास्ता है जिंदगी। काला पत्थर इस फिल्म का ये गाना है जो 1979 में रिलीज हुई थी, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने और लिखा है साहिर लुधियानवी ने। शशि जी का ये गाना है तो उनकी बातें करेंगे, पहले ये गाना सुन लीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आपने अभी अभी शशि कपूर साहब का गाना सुना यादों की बारात में आपकी दोस्त के साथ यानी आरजे स्वरा के साथ। दोस्तों शशि जी ने छोटे राज कपूर साहब का किरदार निभाया था फिल्म आवारा में जो 1951 में रिलीज हुई थी। शशि जी ने एक ब्रिटिश लड़की के साथ शादी की जिनका नाम था जेनिफर केंडल। उनकी बेटी पहली ऐसी कपूर लड़की थी यानी कपूर गर्ल थी जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया। उससे पहले कपूर खानदान से किसी भी लड़की ने बॉलीवुड में काम नहीं किया था। हमें तो अब तक ऐसा लग रहा था कि करिश्मा कपूर वॉज द फर्स्ट, पर नहीं, करिश्मा नहीं, उनकी बेटी संजना कपूर ने पहली बार काम किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाती हूँ दिल का हाल सुने दिलवाला। श्री 420 का ये गाना है जो 1955 में रिलीज हुई थी। नरगिस और राज कपूर के ऊपर ये फिल्माया हुआ खूबसूरत सा गाना है जिसे म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने और लिखा है शैलेंद्र ने। आगे राज कपूर साहब की बातें होंगी, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूबे।

राज कपूर साहब की तो मैं आपको क्या बात बताऊं, एक सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रह चुके हैं और राज कपूर साहब ने हमारे बॉलीवुड को इतनी बेहतरीन फिल्में ही इतनी बेहतरीन फिल्में दी है कि उनकी गिनती टॉप बॉलीवुड फिल्म्स में आज भी होती है। राज कपूर जी की जोड़ी नरगिस के साथ बेहद खूबसूरत लगती थी और उन दोनों ने कई सारी फिल्में एक साथ में की थी। राज कपूर जी ने आरके स्टूडियोज को भी शुरू किया था, पर क्या आपको पता है राज कपूर साहब ने उनकी आंटी के साथ शादी की थी। जी हाँ दोस्तों, राज कपूर साहब ने पृथ्वीराज कपूर के मामा के बेटी के साथ शादी की थी। अब इसमें ज्यादा डीप उतरने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक जानकारी दे दी। ऐसी ही जानकारी आगे भी आएगी। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासूर।

यादों की बारात में दोस्तों अगला गाना है सूरज रे जलते रहना। हरिश्चंद्र तारामणि इस फिल्म का ये गाना है जो 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और जयमाला ने काम किया था। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाया था हेमंत कुमार ने। दोस्तों पृथ्वीराज कपूर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस कपूर फैमिली की नींव बॉलीवुड में रखी। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे पहले फिल्म में काम किया था जो एक मूक चित्रपट था जिसका नाम था आलम आरा। इस फिल्म में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था और उसके बाद में बॉलीवुड में उन्होंने अपना कदम रखा और ऐसा रखा, ऐसा जमा के रखा कि बॉलीवुड से आज तक कपूर खानदान का कदम बिल्कुल भी हिला नहीं है। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का भी।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

प्यारे, जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

तलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।